0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: ஜெனிமா மீடியா அண்ட் என்டர்டைன்மெண்ட் லிமிடெட், தினேஷ் ராஜ் தயாரிப்பில், பவிஸ் நாராயண் நடிப்பில் லவ் ஓ லவ் நாளை முதல் உங்கள் அபிமான திரையரங்குகளில்.
2: ஆடி முடிக்கிற வரைக்கும் எவனுமே கிட்ட வரக்கூடாது, புரியுதா உங்களுக்கு?
3: ஆமா, பெரிய மேஜிக் ஜாக்சன்.
2: ஆபீஸ் போக நீ என்னடா பண்றீங்க?

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: Zenima Media and Entertainment Limited, Dinesh Raj தயாரிப்பில் பவிஸ் நாராயண் நடிப்பில் லவ் ஓ லவ் நாளை முதல் உங்கள் அபிமான திரையரங்குகளில்